तेरे कोई हमारा नहीं है। समंदर का साहिल, पहाड़ों का दामन, समंदर का साहिल, पहाड़ों का दामन, बजुज आह के कुछ

रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। Nobody will be able to prevent the angel of death from taking away the soul from every part and every limb of the body and every vein. He will extract that soul, and then sand will be put over us in our graves. Aakhirat ki fikr karni hai zarur, jaisi karni

बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु

आशिकों का मीना और जाम है अल्लाह जल जलालुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।